0: क्लास तुमको फाफी
1: लक्ष्मी नम पास को साने जुआना ते अंदे इचे ब्लॉक सही इचे ट्रोंग यू सेजन ते ना प्रोग्राम नाइ वा तो से कुछ ते माना बोल वा पे सही ना लोगा ना सकाफ का ते सही जान सफी ते नहीं वा नो चुन फ्यालम बोल नहीं जाने वा चानो हम नहीं मिस सकेला ना करो आ ते फ्यालम बोल नहीं वा चानो माना वो इचे पे सही नी मेरे किस ते मलालो शुआम नोर ची ते अरे फिर सही दे माना बोटा पापांग सही जो ना तो न्याओ
2: हम सो फिफु ना चानो ते सही वो ना तुम तो कचान नहीं पाते मजाना का संताय मजिन वो ना तुम तो कचान तोल मनो सेट सुम चागा चागा ना जान जाए चुम फोक जाए चुम निन आओ जाए मनो जे माफ़ पांग फुन ना या ते मने तो ना माला कासरे चारे च मनो जे ना कुरा ब्रामिया तो आ ते सही ने बाई ते ये तो नहीं वे इंगा ने बाउ सी सना तोल फोक करे चा Usalama tahu tu, usalama sesat tu.
3: Fafa kayaan nuwa afa kamu jecik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik ibepak. Ira fi derana fon dia nai fanan telia nai ratsman dia nai ran sotul sore fa ira te am nira. To cucu ta fa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esat ita fa lacakalal cik.
4: Program kita musan dia nanti lepas. Semba antikian rasa, si baru tenang banget. Tosan bahanan bahan itu kacang. Ini memas nang bata, dia macam macam kemud. Nanti tu kita kena isanan. Macam macam ni arah tu. Jadi macam rumbe full mood di semba. Sekali ni bah, ini sahaja top ni tu warna tulis kita kan. Soalnya kan tentang fitrik Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mifah fakta zonnya so tom so ni mana contian mana manch.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faf.

0: लाश तुम कुफा भी
1: बमंगा तकां को मिन्ना बुमंगा केल संजयं बाई चेरों फुकतान नंबुमाइंस पावटन सहने बुमाइंस अनोटन समास निन्ना मिंस एट्रम सोफा अंड्रा संड्रा सलाव टेनिस फिजरा नताने ते प्यांत चाते वामनी रोपुल ते योन्ना तमले लेफोरु निस फंड्राइस ना नारा नंद्राया ते ओटन फिटफ्टीन ले प्रेसिडेंट इस मुझांस ते ना प्रेसिडेंट वोटन में कार्टे मोबिल ते फिर पेरां फुट से लेसुरत ना टेंटें से सेंबा सुरत प्रेसिडेंट ते सान ना तो ने ने अंदो सुरत ना रा वोटन ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो न तुम रखाये सिस्टीलो इज